पड़ पड़ गड़ी लदिए पड़ पड़ परियसा पड़ पड़ बेड़ी पाइए पड़ पड़ बेड़ी खा पड़ पड़ बेड़ी पाइए पड़ पड़ गड़ी खा पड़िए जते वर्ष वर्ष पड़िए जते मास पड़िए जते आज पड़िए जते साल नानक लेके एक गल होर होमे चकना चाक महला पहला।

ताना अपना किया कमाना अलमल खाई सिरछाई पाई मूरख अंधे पगवाई बिरनावै किछ थाए न पाए रहे बेबाणी मड़ी मसाणी अंध ना जाने फिर पछताणी सतगुरु भेटे सो सुख पाए हर का नाम मनु बसाए नानक नजर करे।

0: पहला पहला
1: शाम कैसे तुम स्वामी सच में छ सच रहे सबको सच समावे रिक रहा

0: अंतर पूजा पढ़े कतेबा संजम दुर्गा पाई छोड़ी ले पखंडा नाम लिए जाय तरन दा महला पहला
1: मानस कणिक ने निवा शिव गाय तिन गलता तिन कर ब्राह्मण पूरे नाग उना पे आवे साध कूड़ी रास कूड़ा बापार

0: एको नाम आधार।
1: आप जी रोजाना इस स्थान तो अमृतमयी बाणी दी विचार दे नाल जुड़दे आ रहे हो। बारह महीनों के मुताबिक, बारह माह के पाठ मुताबिक अज सावन दे दिन की शुरुआत हुई है। सतगुरु महाराज जी कृपा करन, इदे नाल नाल अज भाई साहब भाई तारू सिंह जी की शहीदी का दिन भी है। अज दे शब्द विचों ही भाई साहब जी दे जीवन नू समझण दा यतन करांगे। सतगुरु महाराज जी दे पावन चरणां च बड़ी वार विचारां हो चुकियां ने कि साडा गुरु महाराज जी दे नाल जुड़ना केवल एक दिन दा नहीं, साडा गुरु महाराज नाल जुड़ना हर सवास है, हर पल है, हर दम है। एक घड़ी भी परमेश्वर दे नाम तो बिना साडे लई जीवना औखा हो जाए, ऐसा जीवन असी बनाउना है। इसलिए हर दिन नित उठ के बाणी दा अभ्यास है। ये तां सिर्फ इसलिए ये दिन चुने हन ताकि सानू साडी जिंदगी दा मकसद समझ दे विच आ जाए। अभ्यास साडा रोज दा है, नित उठ गावो प्रभ की बाणी। बारह माह दे पाठ दा मतलब हर महीने सानू एक लैसन दिता है जिन्हों असी कमाना है। ये साडा जिमें स्कूल दे विच होमवर्क हुंदा है, ये साडा वो वर्क है जिहड़ा असी करना है। पर ये सानू तां मिलेगा जे असी बेनती करांगे, पहला अपनी हालत दसांगे। दो बारह माह दे पाठ गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन बाणी विच सुभाए मान ने एक मांझ राग दे विच गुरु अर्जन दे पातशाह जी वल्लों उचारण किया और एक धन गुरु नानक साहब जी वल्लों तुखारी राग दे विच उचारण किया है। जिहड़ा पाठ आप जी ने सरवण किया वो मांझ राग दे विच बारह महा मांझ महल।

फिर हुण अगली गल बड़े ध्यान नाल समझियो। पहला की करना पएगा, पहला उहदे नाम दा रस अंदर बनना चाहिए, पहले उहदे नाम दी बरसात विच भिजना पएगा, फिर उहदे प्रति सच्चा नाम रंग जिहड़ा सी अंदर चढ़ेगा प्रेम दा, फिर एक दा आसरा जीवन विच बनेगा, फिर सारे दुनिया वाले जिहड़े आ कूड़ नज़र आउण लग जाणगे, फिर सब कुछ नाशवंत नज़र आउण लग जाएगा, फिर वह अमृत बूंद जिहड़ी नाम रस दी अंदर जा रही है गुरु नूं मिल के पीण दा सबब बन गया, फिर की होया अंदर मौलिया गया प्रभु दे रंग दे विच, वो पता लगा भी वह समर्थ पुरख अपार है, हुण मन तड़पण लग गया उन्हूं मिलण वास्ते भी, हुण नहीं रहा जांदा, हुण एक घड़ी ना मिलते तो कलयुग होता, हुण कद मिलिए प्रिय तो तुद भगवंता, प्यारिया हुण मन लोचदा है। फिर बेनती करा, गल समझ के चलियो, किसी की भावना नूं ठेस नहीं, भावें कोई महीने बाद आया तो भावें कोई दो महीने बाद आया तो भावें रोज़ गुरु चरणा विच आउण वाले आ। असी जे हजे यही सोच रहे हैं कि अज संगरांद है तो चलीए मत्था टेकीए, मुबारक है, चलो सोच तो बनी ना भी चलीए, फिर बंदा कहिंदा हुण अगली संगरांद देखांगे, इहदा मतलब 30-29 दिन का गैप पै गया विच, वह फिर अंदर हजे आ अवस्था नहीं सी बनी जिहड़ी महाराज जी कहिंदे हर मिलने नूं मन लोचदा, नहीं बनी, हजे रस नहीं बनिया, हजे भिजिया नहीं अंदर, हजे मन तन रत्ता सच रंग इको नाम आधार नहीं बनिया। 29 दिन पता नहीं उन्हें कित्थे कित्थे जाना है, किदे किदे अगे निभना है, किहड़े किहड़े धर्म दे कर्म करने हैं। एक वो है जिहड़ा रोज़ गुरु महाराज दे दर ते आ रहा है, रोज़ आ रहा और आउंदियां आउंदियां उहदे अंदर मन तन रत्ता सच रंग फिर तड़प पैदा हो गई। वो तड़प ऐसी सी कि जे किसी टाइम ना गुरु चरणा च जुड़िया जा नितनेम होवे, फिर मन कहिंदा मेरा मन लोचे गुर दर्शन ताई बिलप करे चातरिक कीने आई, वो फिर बिरलाप करदा है अंदरों तड़पदा है। हुण जिहदे अंदर प्रभु नूं मिलण दी अंदर तड़प पैदा हो गई है, वो किदां होई है, जदों हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवन हार, हुण यह अवस्था इत्थे तक आ गई कि हर मिलने नूं मन लोचदा, मेरा मन ते उहनूं मिलण नूं लोचदा है, पर उहदी अगों बख्शिश भी तो होनी चाहीदी है ना, उहदी किरपा भी तो होनी चाहीदी है। हुण इधरों अरदासां शुरू हो गई, इधरों बेनतियां शुरू हो गई, जिन्हों मिलण लई प्रभु परमेश्वर की गल हो रही है, जिन्हों मिलण लई मन अंदर तड़पण, जां मन अपने मूल नूं मिलण लई तड़पदा है, मन तो जोत स्वरूप है तड़पदा है वह मिलण लई, हुण उह बेनतियां हो रही ने कि वाहिगुरु जी कोई है जिहड़ा तेरे नाल मिला दे, किदां बख्शिश होएगी, किदां किरपा होएगी, कोई आण मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा हों तिस पे आप विचाई। हुण मन कहिंदा है कि प्यारे आ जे कोई किसे दे राही किरपा हो जाए तो मैं ते अपना आपा उन्हूं वेच दिया कुरबान कर, प्रेम विच कुरबान कीता जांदा है, हंकार दे विच कुरबानी लई जांदी है, बस आ फर्क है, हंकार विच कुरबानी मंगी जांदी है भी दे कुरबानी, ते प्रेम विच कुरबानी दित्ती जांदी है। कहिंदे हुण की अवस्था ये बन गई, हुण अपने अपने अंदर देखो भी मेरा मन लोचदा है, ये तड़प मेरे अंदर जड़ी सी हो गई शुरू, तड़प बन गई मेरे अंदर प्रभु नूं मिलण दी, तां महाराज कहिंदे हर मिलने नूं मन लोचदा, हुण मन लोचदा है, करम करम दे मां अखर नूं सिहारी बख्शिश नाल, इत्थे करम दा अर्थ हो नहीं जिहड़े मैं कर रहा, इत्थे करम दा अर्थ है बख्शिश नाल। ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਾਂ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਜੇ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਉਹ ਮੇਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ ਜਿਹਨੇ ਮਿਲਾਉਣਾ
ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਸਕ

0: गुरु महाराज जी तरस करन, कृपा करन, बाणी और बाणी दे रंग विच रंग देन। असी भी मन ते तन करके सच्चे नाम रंग विच रंगे जाइए, जिदे नाल लोक सुखी है परलोक सुहेले। नानक हर प्रभ आपे मेले जीवन बने, आउन वाला समा सारियां लई सुहावना सुखमई आनंदमई होवे। अज दियां विचारां करदियां बेअंत गलतियां भुल्लां होईयां सतगुरु बख्श देन, अगे तो समत देन। ये पावन बचन अपने हिरदे च वसा लईए जी।
1: नानक हर जी मया कर

नानक दास बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की बात साई दशमी प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक ली ते आए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास की सहाय। अर्जुन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आइए बिठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै करनो निदा बिताए। सब थाई होए सहाय। दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीयां दे पाठ दीदार दा ध्यान तर के बोलो जी। पंजां प्यारियां चौहान साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां। जिन्हां नाम जपया बंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अंडट कीता। ते नाम प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान तर के बोलो जी। जिन्हां सिंघा सिंघनियां ने धर्म हेत शीश दिते बन बंद कटाए खोपरियां लहाइयां।

तैसो ही मैं डीठो विसड़िया मिले प्रभु हर दर्गे का बसीठो सो कोटल गुरु सेवी एहनस सहज सो पाए दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए सतनाम श्री वाहि गुरु साहेब जी जैत श्री महला चौथा कर पहला चौपद एक ओंकार

गुरु हाथ पर मेरा मथा, जन्म जन्म के कलविख दुख तरे, गुरु नाम दियो रिनलाथा। मेरे मन भजो

तिन साधु चरण न सिर कबहु, तिन सब जन्म कथा जिन साधु चरण साधु पग सेवे, तिन सफल जन्म सनाथा मोको की जय दास दास दसन को हर दया तार जगन्नाथा।

जन नानक चल है मिलंथा, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी।

ठकवाए प्रभु की साम सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी बारह महामाज महला पंजवा कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सावन सरसी कामनी चरण कमल सों प्यार।

कर्ममला गुणहार जिनी सखिए प्रभु पाया हम तिन के सद बलिहार नानक हर जी मया कर हो सब सवारन हार सावन तिना सुहा।

से पौड़ियां नंद साहब जी के पाठ की अरदास है जी। अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करनी आप जी आन दर ते समूह साध संगत दी हाजरी दर प्रवान करनी तिल फुल पेटा बांदर प्रवान करनियां यात्रावां सफल करनियां दरों घरों गुर सिखी जीवन नाम बानी दियां दातां बख्शनियां कलंगी धर सचे पातशाह आप जियां ने कृपा करनी मेहरामत करनी आउण वाला समा आप जियां दी जान आप जियां दे प्रेम दे विच बतीत करवावना आप जियां दी हजूरी अंदर पवित्र कड़ा प्रसाद जी देख सज के हाजिर है दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद समूह साध संगत विच वरतौण दी आग्या बख्शो आप जी करो कृपा अपनी अमृतमई बाणी विचों पावन पवित्र हुक्म दी दात बख्शो हुक्म अनुसार जीवन जिउण दी समर्था बख्शो अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करनी सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहे बंद होवन नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। दोहरा आग्या पई अकाल की सब सिखण को हुक्म है गुरु ग्रंथ जी माने ओ जो प्रभु को।

क्यों चला मार्ग पंथा, हम अंधल को गुरुअंचल दीजा। जन नानक चल है मिलंथा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहेब जी। किरत कर्म के विसोड़, कर कृपा मिल हो राम। चार कुंट बंद सप्रमे, थक प्रभु की सा।

ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਏ ਕੇਵੜ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗਮੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇਵੜ ਚੀਰਾ ਰਹਾਓ ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰਹਾਈ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਸਿੱਧਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤੁਦਵਣ ਸਿੱਧੀ ਕਿੰਨੇ ਨਾ ਪਾਈਆ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਨਾਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈਆ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹੇ ਤਿਸੇ ਕਿਆ ਚਾਰਾ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰ ਨਹਾਰਾ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਊਂ ਆਖਣੇ ਔਖਾ ਸੱਚਾ ਨਾਉਂ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੇ ਭੂਖ ਉਤ ਭੁੱਖੇ ਖਾਏ ਚਲੀਹੈ ਦੁੱਖ ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚੇ ਨਾਏ ਰਹਾਓ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ ਆਖ ਥੱਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜੇ ਸਾ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਭੋਗ ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਏ ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ ਜੇ ਵੱਡੇ ਆਪ ਤੇ ਵੱਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਜੈਨੋ ਦੇਨੋ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ ਖਸਮ ਮਿਸਾਰੀ ਤੇ ਕਮ ਜਾਤ ਨਾਨਕ ਨਾਵੇਂ ਬਾਇਸਨਾਥ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਗੁਰ ਪਾਸ ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਣਾਈ ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇ ਮੋਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਣ ਸਿਖਾਈ ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਰਹਾਓ ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਵੱਡ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹਰ ਪਿਆਸ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸਿਹੀ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਾਸ ਜਿਨਾ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਾਗਹੀਨ ਜਮ ਪਾਸ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ ਤਿੰਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਖਾਸ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਾਨ ਚਿਤਵਹੇ ਉਦਮ ਜਾ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀ ਗੋ ਪਰਿਆ ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜਨ ਤੇ ਉਪਾਏ ਤਾਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗੇ ਕਰ ਧਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾਓ ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬੈਂਤਾ ਕੋਇ ਰਾਂ ਕਿਸਕੀ ਧਰਿਆ ਸਿਰ ਸੇ ਰਿਜਕ ਸਵਾਹੀ ਠਾਕੁਰ ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ ਊੜੇ ਊੜ ਆਵੈ ਸੈ ਕੁੰਸਾਂ ਤਿਸ ਪਾਛੇ ਬਚਰੇ ਛਰਿਆ ਤਿੰਨ ਕਵਣ ਖਲਾਵੈ ਕਵਣ ਚੁਗਾਵੈ ਮਨ ਮੈਂ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਸਭ ਨਿਧਾਨ ਦਸ ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਏ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਭਰਿਆ
सब निधान दस अष्ट सिदान ठाकुर कर तल तरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना पारा भरिया राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर गम्मा गम्मा पारा सब त्या वही सब त्या वही तुद जी हर सच्चे सृजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्या बहो संतो जी सब दुख विसार नहारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घटे अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समाना एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज बडाना तू आपे दाता आपे भुगता जी हों तुद बिन अवर ना जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आक वखाना जो सेव है जो सेव है तुद जी जन नानक तिन कुरबाना हर ते आवहि हर ते आवहि तुद जी से जाने जुग मैं सुखवासी से मुक्त पाए जैनो हर ते आया जी तेनो टूटी जमकी फांसी जैन निरपौ जिन हर निरपौ ते आया जी तिनका पौ सब गवासी जिन सेविया जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक करें हर पूजा जी तप ताप ही जप ही बेअंता तेरे अनेक पढ़े बहु सिमर शास्त्र जी कर किरिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जे बड़े अवर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नहीं चल करता सोई तुद आपे पावे सोई वरतै जी तू आपे करहें सो होई तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सब सिका जानुई आसा महला चौथा तू करता सचियार मेंडा साई जो तो पावे सोई थीसी जो तू दे सोई हो पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी ते आया जिसनों कृपा करे तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मनमुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया तू दरिया सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी जंत सब तेरा खेल वियोग मिल बिछड़िया संयोगी मेल जिसनों तू जान है सोई जन जाने हर गुण सद ही आख वखाने जिन हर सेवया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया
तू अपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर ना कोए, तू कर कर वेखे जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला तित सर्वरणय भैरे निवासा, पाणी पावक तिन्हे किया पंकजो मोह पग नहीं चाले, हम देखा तह डूबियले, मान एक न चेतस मूढ़ मना, हर विसर तेरे गुण गलिया रहो, नाहो जती सती नहीं पड़या, मूरख मुगदा जन्म पया, प्रणत नानक तिनकी शरणा, जैनों तू नाही विसरिया, आसा महला पंजवा, भई प्राप्त मानुक दे हुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरा किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम, श्रृंजा लाग पवजल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कै रहौ, जप तप संजम धर्म ना कमया, सेवा साध ना जन्या हर राया, कोहु नानक हम नीच करम्मा, शरण परे की रखो हो शर्मा, जप तप संजम धर्म ना कमया, सेवा साध ना जन्या हर राया, कोहु नानक हम नीच करम्मा, शरण परे की रखो हो शर्मा। इको ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह, पातशाही दसवीं, कबियो बाच बेनती चाओ पाई, अमरी क्रोह दै रक्षा, पूर्ण होए चित्त की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सवय तुम काव हो, आभा दै मुहे बचाव हो, सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक सिख सवय करतारा, मोर अच्छा निज कर दे करिए, सवैरन को आय संगरिए, पूरन होए हमारी आसा, तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं, जो वर चाहो सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारे तारिए, चुन चुन शतर हमारे मारिए, आभाद मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास निवरिए, हो जाओ सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तु जो करी हो रक्षा, राख लेओ मुहे रखण हारे, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दसकंता, काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजु अवतरा, काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जमन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जू थियो, जमन काल सब लोक सवारा, नमस्कार हैं ताहे हमारा, जमन काल सब जगत बनायो, देव दैंद जक्षण उपजायो, आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तिसही को हमारी,
सकल प्रजा जिन आप सवारी सेवकन को सेव गुण सुख दियो शत्रण को पलमो बद कियो कटक

अपारा धवया कर्क करतुहों कबहू तुम मैं मिलत दहे धर सबहू जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे आप अपनी बूझ उचारे तुम सब ही ते रहत नरालम जानत बेद भेद अर आलम रंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड़ उचारत पेदा जाको पेव न पावत बेदा ताको कर पाहण अनुमानित महामूड़ कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव रंकार का चीनत नह भेव आप अपनी बुध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तो है तेती तुमरा लखा ना जय पसारा किह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक पयो राव कहीं पूपा अंडज जे रज से तज कीनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी कहो फूल राजा हवे बैठा कहो सिमट पयो शंकर अकैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंप आ जुगा स्वरूप स्वयंप अब रक्षा मेरी तुम करो सिखे ओवर असिख संघरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेच्छ करो रण गाता ये अस्तु तव शरणी परे तिनके दुष्ट दुख तुहवै मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को इक बार है ताके काल निकट न है रक्षा हुए ताही सब कला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे न हरयो ताके ताप तनक मैं हरयो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाहवय सके ना कोई एक बार जिन तुम्हें संवारा काल फांसती ताहे ओवारा।

मैं शरण तिहारी आप हाथ दे ले हो उवारी सरवठ मोह हो सहाई दुष्ट दोख ते ले हो बचाई सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने राम रहीम प्राण कुरान अनेक कहे मत एक न मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सभाए बहु भेद कहे हम एक न जान्यों।

दोहरा सगल द्वार कौ छे गए हो तोहारो द्वार वहीं गहे की लाज अस गोविंदास तोहार सगल द्वार कौ छे गए हो।

कली महला तीजा अनंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद अनंत भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन मजियां वादाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावन आइया शब्दो तंगाव हरी केरा मन जिनी वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीका ओह करे तेरा कर्ज सब सवारना सबना गल्ला समृत स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले सचे साहेबा क्या नाही घर तेरा करता तेरा सब किछ है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा साचा नाम मेरा आधारो सच नाम आधार मेरा जैनो भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसिया जैनो इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटहो जिस दिया एह वडियाइया कह नानक सुनहो संतहो शब्द धरो पे आरो सचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब तित कर सपागे घर सपागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दो तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिनको से नाम हर के लागे कह नानक तस कहोआ तित खर अन्न हद वाजे आनंद सुनहौ वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पाए सरसे पूरे गुर ते जानी सुन ते पौनी कहते पवित सतगुर रहा भर उरे बिनावंत नान गुर चरण लागे वाजे अनहद तुरे सुन ते पौनी कहते पवित्र

मंदामणि महला पंजवां थाल विच तिन वस्तु पइओ सत्य संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे आधारो जे को खावे जे को पुंचै तिसका हुए उदारो एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख और तारो तम संसार चरण लग तरिया

0: तेरा कीता जातो नाही मैनो जोग की तोई मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस पायोई तरस पाया मेरा मत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिले तां जीवा तन मन थीवै हरिया तरस पाया मेरा मत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिले तां जीवा तन मन थीवै हरिया वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह
1: ठाकुर तुम पहरदास पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम तुमरी कृपा मैं सुख कनेरे कोई न जाने ऊचे ते ऊचा भगवंत सगल समगरी तुमरै

गुरपूरे हर नाम दृढ़ाया, बिन नामे जीवन बिरथा रहाओ। बिन गुर मूड पाए है मन मुख, ते मोह माया नित फाथा। तिन साधु चरण ना सेवै कबहू, तिन सब जन्म अकथा। जिन साधु चरण साध पग सेवै,

दीजै जन नानक चले मलंथा, हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चले मार्ग पंथा, हम अंधले को गुरे अंचल दीजै जन नानक चले मलंथा। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। मोरी रुन चुन लाया भैने सावन आया, तेरे मुंद कटारे जे वड़ा तिन लोबी लो लाया। नानक सोई दिन सुहावड़ा, जित प्रभ आवे चित जित दिन विसरे पार ब्रह्म। फिट पलेरी रुत महादिवस मूरत भले, जिसको नदर करे नानक मंगे दर्श दान। कृपा करो हरे दर्शन प्यासी दिन सरात, चितवन दिन नीत खोल कपट गुर मेलिया। नानक हर संग मीत सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जियो। सामन ससी कामणि चरण कमल स्यों प्यार, मन तन रत्ता सच रंग इको नाम आधार। सामन सरसी कामणि चरण कमल स्यों प्यार, मन तन रत्ता सच रंग इको नाम आधार।

हर अमृत बूंद सुहावणी मिल साधु पीवण हार वण तिन प्रव संग मोलिया समरथ पुरख अपार हर मिलने नो मन लोचदा करम मिलावण हार जिन सखिया प्रभ पाया हो तिन कै सद बलहार नानक हर जी मया कर शब्द सवार नहार सावन तिना सोहगणी जिन राम नाम और हार हर मिलने नु मन लोचदा कर्म मिलावन हार जिन सखिए प्रभ पाया हो तिन कै सद बलहार नानक हर जी मया कर शब्द सवारन हार सावन तिना सोहगणी जन राम नाम और हार वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

ऐसे ने केतक जीवन मरने माहे, जीवन मरन तक संगी पए तब है गुरु ना, फिर भी वह गुरु साहब दे संगी।

पिता धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जिया का कोटान कोट शुकराना है जी। आप जी ने अमृत विले तो खुले दर्शन ददारे बख्शे आप जी दे हजूर रात्रि विले दे गुरमत दीवान सजाए गए सजे हुए दीवाना है अंदर गुर इतिहास लड़ीवार कथा विचार शब्द कीर्तन छे पौड़ियां आनंद साहिब जी दे जाप होए बाणी पढ़दे हां अनेक प्रकार दियां भुलां गलतियां हो जांदियां ने अखर वाधा घाटा भुल चुक माफ करनी गां तो समत बख्शनी दारे आई हुई संगत दी हाजरी दर प्रवान करनी तिल फुल पेटावां दर मंजूर करनियां यात्रावां सफल करनियां जी। सतगुरु जी आप जी दे हजूर पवित्र कड़ा प्रसाद दी देख सज के हाजर है दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरते जो जीव शके आप जी दा पवित्र नाम सतनाम वाहिगुरु नाम जपे जी। आप जी करो कृपा अमृतमई बाणी विचों पावन हुकम बख्शो हुकम अनुसार जीवन ज्यों दी समर्था सूझ

जल बिना शाख कुमलावती उपजै नाही दाम। हर नाना मिलिए साजनै कत पाइए विश्राम। जित कर हर कंतना प्रगटई पाठ नगर से ग्राम। सरब सिंगार तंबोल रस सन देही सब खाम।

0: प्रसाद
1: जय कर कीर्त आखिया करते कावे बेचारो तित कर गावो सोय लाल सवरेहो सृजनहारो तुम गावो मेरे निरपौ का सोय लाओ आरी जिद सोय लै सदा सुख होय रहाओ नित नित जीड़े संभालियन देखै गा दे मनहार तेरे दाने कीमत ना पवै तिस दाते कवन समार संबत सा लिखिया मिल कर पाओ तेल दियो सजन आसीसड़िया ज्यों होवै साहिब सो मेल कर करियो पहुँचा सदड़े नित पवन सदना रा सिमरिया नानक से देवन रावसा मल्ला पहला शे कर शे गुर शे उपदेश गुर गुर एको वेस अनेक बाबा जय कर करते कीर्त होए सो कर राग बनाई तो राग विश्वे जिसे अकड़िया पैरा थिती वारी माहुआ सूरज एको रुत अनेक नानक करते के केते वेस राग तन आसरी महला पहला गगन मै थाल रव चांद दीप कवने तारका मंडल जनक मोती धूप मल्याण लो पवन चबरो करे सगल बन राय फुलंत ज्योति कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती अनहत्ता शब्द वा जंत भेरी रहाओ सहस तव नैन नैन तोय कहो सहस मूर्त न एक तोई सहस पद बिमल नान एक पद गांध बिन सहस तव गांधे विचलत मोई सब मैं ज्योत ज्योत सोए इसदै चानन सब मैं चानन होए गुर साखी ज्योत प्रगट होए ज्योत इस भाव सो आरती होए हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो आंदन मोए आए प्यासा कृपा जल देना अनुसार कोय जाते तिरनाए वासा राग गौड़ी पूर्वी माला चौथा काम क्रोध नगर वो भरिया मन साधु खंड लखंडा है पूर्व लिखित लिखे गुर पाया मन अरल मंडल मंडा है कर साधु अंजलि पनवड्डा है कर डंडाओ तो अपन वडाए राग साख तर साधन जाने आतने अंतरों में कंडाए ज्यों ज्यों चले चुभे दुख पावे जमकाल सह सिर डंडाए हर जनार हर नाम समाणी दुख जन्म मरण पव खंडाए अविनाशी पुरु पाया परमेश्वर बहु सौ खान ब्रह्मंडाए हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वडाए जन नानक नाम दा टेकै हर नामे सुमंडाए राग गौड़ी पूर्वी माला पंजवा करो बेनती सुन मेरे मीता संत टैल की बेलाइया खाट चलो अरला आग्ञा वसन सुहेला उदकट दिन सरह नारी मन गुरमलका सवार रहाओ ए संसार विकार संसे मैं तरियो ब्रह्म ज्ञानी सहज गाय प्यावे ए रस अकथ कथा तन जानी जा को आए सोई बिहाजो हर गुरते मने बसेरा निज कर मैल पावो सुख सहजे बौड़ न होए को फेरा।

0: जो मर्ज में सो कच ने कच महला पहला
1: वडी वडियाई जा वडानो वडी वडियाई जा सच ने वडी वडियाई जा नेचर थाओ वडी वडियाई जाने आला वडी वडियाई बुझ सब पाओ वडी वडियाई जा पुछ न दात वडी वडियाई जा पे आप नानकार न कथनी जाए कीता करना सरबर जय महला दूजा
0: इहो जग सचे की है कोठड़ी सचे का विचवास कना सुन समय लेकिन किवें करे विनाश कना पाणे कड़ लेकिन माया विच निवास एव प्याकन जापही जे किसे ने रास
1: नानक गुरमुख जानिया जग आप करे परगास।

हर अंत नाही पारावार, कौन है करे विचार, जगत पिता है सर्व प्राण को दार, जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म संसर, एक जी क्या बखाने, हाके बल बल बल बल।

पर अपर अपार पर अपनो पावन कर मंत्र ना दूसरों तर ओ पत पर लो एक निमख तो कर आन नाही समसर उजियारो निर्मर कोट ब्राछत जाए नाम लिए हर हर जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म सम

जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म संसार एक जी क्या बखाने हाके बल बल बल बल सद बलिहार सर्व गुण निदान।

जे लग पाओ जल तरना, बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पावे, देहो दर्स मन चाओ भगत एह मन ठहरावे। बलि उच राग अंधियार में, सब कल उदरी इक नाम धर्म, प्रगट सगल हर पवन में, जन नानक।

0: सन छिन मह त्यागत नांग सिधारो सूर न वीर न मीर न खानम संग न को दृष्ट निहारो कूट न ओट न कोस न छोटा करत बेकार दो कर चारो मित्र न पुत्र कलतर साजन सख उल्टत जात बिरक की छारो दीन दयाल पुरख प्रभ पूरन छिन छिन सिमरो अगम अपारो श्रीपत नाथ शरण नानक जन हे भगवंत कृपा कर तारो।
1: जग और नयहे महातम मैं।

जय जयकार जास जग अंदर मंदर भाग जुगत शिव रहता गुरपुरा पायो वड भागी लिव लागी मेदन पर सहता पै भंजन पर पीर निवारन कल सहार तोए।

मगन परमत गुगना सुत बंता साजन संग बंदप तास्यो मोह बड़ो सुगना बोल बीज अहम।

किरण उधर सागर को नाम तरंग अंत को पावे रुद्र ध्यान ज्ञान सत गुरु।

के जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत खसाम दी नूर अरसों कुरसों हो चटिए तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है।

पौड़ी सच्चा सब एक तुझन सच सच बताया, जिस तुझे तस मिला सदा दिन सच कमाया। सतगुर मिलिया सच पाया, जिनके हृदय सच वसाया, मूर्ख सच न जानने मन।